0: जिगरदान घड़वी उर्फे जिगराना कंठे तारी मध मीठी वाटे। जी हाँ, लोटस एफ एम गीतमाला पर आप सब सांभळी रहा था। अहीं आगळ ज एक छेल्लो जाहेरात नो मध्यांतर ले, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर सम बर्ड्स टू प्ले एंड देर आफ्टर माय वेरी फेवरेट फीचर ऑफ दिस प्रोग्राम बे शायरी आप सबनी साथे शेयर करीस बिफोर आई ब्रिंग द कर्टन्स डाउन ऑन दिस एडिशन ऑफ गीतमाला।
1: Ach, Barry, I don't know what I'm doing anymore. My life has taken a hard left at career goals.
2: It's not your life that's turning, Brute. It's your steering.
1: My steering?
2: Your car's pulling left like your decisions. Go get top quality Miler steering parts from Goldwagen. That will set you straight.
1: Wait, I feel aligned.
2: It's just your steering that needed direction. Goldwagen, keep on driving.
0: You're tuned into Lotus FM's Geek Mala. It's our Gujarati program which comes your way every Thursday evening. My name is Ashit Desai. It's time now to bring the curtains down on this edition, but not before I share two amazing shairis with you. Aaj to ek mari bahut special je from an amazing poet, Kavi Shri Mool Shankar Trivedi ni che. But before that, just a quick reminder, news coming up on top of the hour, and that's going to be with Salma, followed by our talk show between 7 and 9. That's Talk at 7. Jarur ema bhag lesho. It's going to be an amazing and interesting, engaging one, like always. But for now, aaj ni sauthi pehli rachna Kavi Shri Mool Shankar Trivedi ni je aa ke ketli najuk ghadi che e zindagi na davni. Ketli najuk ghadi che e zindagi na davni. Jeet par baji hati ne harvanu man hatu. केटली नाजुक घड़ी ए जिंदगी ना दावनी, जीत पर बाजी हती ने हारवानु मन थयू। अने आजनी बीजी एज है के प्रतिभा भगवान आपे छे, नम्र रहो। ख्याति समाज आपे छे, आभारी बनो, परंतु वलन अने गौरव स्वयं प्राप्त थाय छे, सावचेत रहो। प्रतिभा भगवान आपे छे, नम्र रहो। ख्याति समाज आपे छे, आभारी बनो, परंतु वलण अने गौरव स्वयं थी प्राप्त थाय छे, सावचेत रहो। जो पसंद आवी होय तो जरूर लोटस एफएम नी वेबसाइट पर जईने अमारा पॉडकास्ट सेक्शन में एक बार जईने फरीथी सांभळजो, तमारा स्नेहीजनों साथे सांभळजो, अने आवता गुरुवारे जरूर मारी साथे फरीथी एक बार जोड़ाशो गीतमाला पर सांजे 6 अने 7 नी वच्चे मात्र लोटस एफएम पर। आप सौनी आजे विदाय लाउं छुं। आप सौने खूब ज शुभरात्रि, अने प्रभुनुं कह्युं कर्या करशो, फळनी आशा राख्या वगर कर्म करता रहेशो। आजना दिवसनुं आ छेल्लुं गीत वेला मिलननी, बेगुपन वेला वालम आवजो।

आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे।